पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र की आदि शक्ति भगवती देवी माता की बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

बलि हनुमान जी इन दिस भजन दुनिया में देव हजारों हैं इन दिस वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड बट द फॉर्म ऑफ हनुमान जी हाउ कैन वी डिस्क्राइब हिम व्हाट कैन वी से ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स एंड डिवोशन हिज ग्लोरीज आर सो मैग्निफिसेंट ये सात समुंदर लांघ गए ही लेप्ट अक्रॉस एन एंटायर ओशन एंड पेनिट्रेटेड द फोर्ट्रेस ऑफ रावण पर्वत को थाना लक्ष्मण जी को जिलाना He lifted a huge mountain to obtain the Sanjeevani herb, saving Lakshman's life. Siya Ram ki jori baithi hai, Shri Ram and Sita Devi are seated in his heart. How can we even begin to describe his greatness? Jai Bajrang Bali.

शलम बोदर सोहे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे।